0: यू आर लिसनिंग टू विरिजल्लू, आप सुन रहे हैं विरिजल्लू एंड टुडेस आज के फंकार हैं के एंड द नंबर टू कॉल इज 877-265-5992 द नंबर अगेन 877-265-5992 यू आर लिसनिंग टू के ऑन विरिजल्लू एंड call in and all the people who do call in will be entered into a lucky draw and we'll give out some prizes like movie tickets and gift certificates based on a lucky draw. So please do call in and there is no right or wrong answer and the questions abhi tak jo prashn puche gaye the the krishna ko sorry KK ka pura naam kya hai. So the full name, I think I almost blurted it out. और मैंने आधा तो कह दिया लेकिन पूरा नाम क्या है. So that's the first question. और स्ट्रॉबेरी आंखें गाना सुनी थी आपने, इसके lyricist कौन है? Let us take a call. Hello, hello, you're live on air. Hi there, can barely hear.
1: Hi.
0: Hi.
1: Can you hear me now?
0: Yeah. Your name, please.
1: My name is Tariq.
0: Tariq, okay. So what question can you answer for us?
1: I just had the answer. Krishna Kumar.
0: Haan, pura naam bataiye. Wo, Krishna Kumar.
1: Krishna Kumar Radha.

0: whatever your insurance needs are. Onshore Care gives you peace of mind. Contact 855-OK-ALL-OK or visit onshorecare.com. That is onshorecare.com. When you have OK, everything will be OK.
1: Buying a home is the biggest investment of your life. It's the stepping stone to generational wealth. But you can't build a legacy if you buy the wrong house. That's why you need Nagarajanayya, the real estate and mortgage genie. He gives you access to off-market deals and structures your loan to win.
2: I am Nagarajanayya. Whether you're on H-1B visa or a first-time buyer, I turn you into a power buyer so we close in 14 days. And I stand behind my work. Love your home or sell it for free. Guarantee.
1: Don't just buy a home, plan your future. Call Nagarajanayya at 408-805-4653. That's 408-805-4653. Or download his free real estate guide at nagarajhomes.com. Terms apply. Equal housing lender. NMLS 1938293.
3: Are you a Java programmer? Did you take a career break and are now ready to launch back into the market? Apex Consulting has urgent requirements. Candidates should have a valid work visa with at least 2 years of experience. Hardworking and committed candidates only. If interested, call 510-431-7670 or email info@apexconsultingservices.us.
4: वेलकम बैक टू विरिजल्लू. यू आर लिसनिंग टू योर आरजे सतीश एंड आज हम सुन रहे हैं केके जी के गाने. एंड यू नो ही हैज स्पैंड अराउंड ऑलमोस्ट क्लोज टू 30 इयर्स आई वुड से ऑफ सॉन्ग्स. एंड अभी लेट अस गो अ लिटिल बिट फास्टर. मोस्टली दिस सॉन्ग प्रूव्ड कि 20 साल के बाद भी केके की आवाज़ वैसा ही द बचपना एंड द वॉइस हैज़ अ फ्रेश इन चाइल्ड लाइक इनोसेंस. डायरेक्टर कबीर खान वांटेड दिस सॉन्ग टू बी इमोशनल हार्ट ऑफ द केके एंड केके जी ने एक्चुअली ये गाना वो बच्ची को देख के उसके बाद गाया था. सो लेट अस लिसन टू दिस सॉन्ग.

So that was the song from Bajrangi Bhaijaan and Tu Jo Mila, and that proved हमने तो सब सो इट द फेमस डायलॉग फ्रॉम दैट मूवी वाज हमने तो कब से दिल दे दिया बस बजरंग बली का इंतजार था इफ यू रिमेंबर दैट एंड द नंबर टू कॉल इज 877-265-5992 एंड ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड ऑफ द शो लेट अस लिसन टू वन मोर सॉन्ग लेट्स प्ले द सॉन्ग